SBS South Asian. Sorry,

हारती, वो जा रहा है कोई शबगम दिखा। वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन।

0: ये चलेंगे और हालात हाजरा में आप सुनिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी है, अलीमा ख़ान की डील की खबरों की तरदीद और पाक हालात हाजरा में सुन सकेंगे तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बातचीत और बजट भी मुल्क में एक अहम मौजू है इस वक्त सियासी लैंडस्केप पर। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से, जो इन दिनों ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे। पाकिस्तान की मौसीकी का एक नुमाया नाम रहे हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी शानदार कारकर्दगी के बायस वो काफ़ी मशहूर रहें। उनकी दिलचस्प गुफ्तगू और कुछ गीतों की झलकियाँ आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल रहेगा, मगर हसब मामूल पहले चलते हैं इस वक्त तक की ताज़ा तरीन मुख्तसर ख़बरों की तरफ। तीन जून बरोज बुध की मुख्तसर उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी। सोलोमन आइलैंड के नौ मुंतखब वजीर आजम मैथ्यू वेले अपने पहले दौरे पर कैनबरा पहुंचे हैं, जहां उनका खैर मकदम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड तवक्के है कि इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड के दरमियान एक जामे माहदे के सिलसिले में बातचीत होगी, जबकि चीन के साथ मौजूदा बहरुलकाहिल ममालिक के सिक्योरिटी माहदे का असर नौ जायज़ा लिया जा रहा है। यह माहदा बहरुलकाहिल के हमसाये ममालिक के साथ होने वाले सिलसिलेवार माहदों में ताज़ा तरीन है, जिसका मकसद खत्ते में चीन के असर व रसूख का मुकाबला करना है।
1: दिस ट्रेडी विल अलाउ ऑस्ट्रेलिया एंड द सोलोमन आइलैंड्स टू कन्फ्रंट global and regional challenges as partners. This is a significant body of work and we've asked our foreign ministers to lead and drive this forward.
0: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान आपदोस्त के माहदे पर बहस छिड़ गई है, जबकि लेबर के साबिक वजीर एड ह्यूजिक ने इस माहदे पर दोबारा मुजाकरात का मुतालबा किया है। वजीर खारजा पैनी वोंग ने ऑकस आपदोस्त माहदों में हालिया तब्दीलियों का दिफा किया है। लेबर के बैक बेंचर्स का कहना है कि लेबर पार्टी के अंदर इस माहदे पर बेचैनी पाई जाती है और हुकूमत को अपने मौकिफ पर नजरसानी करना चाहिए। दिफाई माहदे पर शकूक उस वक्त बढ़ गए जब हालिया ऐलान में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से सिर्फ इस्तेमाल शुदा जौहरी आपदोजें खरीद रहा है। ताहम 9 के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए पैनी वोंग ने इस माहदे पर किसी किस्म के वोट या नजरसानी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अहलकारों को आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजा जा रहा है। ये इकदाम रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेनी फौजियों की तरबियत के लिए किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अहलकार जल्द पोलैंड पहुंचेंगे, जहां वो यूक्रेनी फौजियों की तरबियत का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अवाम को ऑनलाइन गैर कानूनी जुए और गैम्बलिंग से मुंसलिक स्कैमिंग फ्रॉड में इजाफे से खबरदार किया जा रहा है। टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी के माहिर डैरन पावली का कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड और जुआ एक तेज़ी से बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके बायस लोग पहले ही सालाना तकरीबन 2.2 अरब डॉलर का नुकसान उठा रहे हैं। और अब कुछ आलमी खबरें। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में हमले जारी हैं, अगरचे हिजबुल्ला के साथ कशीदगी कम करने के लिए जज्वी जंग बंदी भी मौजूद है। लबनानी सेहत हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिसमें अस्पताल का अमला भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुजाकरात मुअत्तल होने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। मिस्टर ट्रंप का कहना था कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है और अब वक्त आ गया है कि किसी तरीके से माहदे पर पहुंचा जाए। ईरान और अमरीका ने एक दूसरे पर खलीजी खत्ते में मिज़ाइल हमलों का इल्ज़ाम लगाया है और दोनों जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान के जजीरे कुशम पर दिफाई कार्रवाई के तौर पर हमले किए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन बहर अरब में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। और आखिर में खेल। लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त देकर 3 रोजा मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान जॉश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन की निस्फ सेंचुरियों के बावजूद कई बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों के सामने बेबस नजर आए। इसके बावजूद इनिंग्स के आखिर में ओलिवर पैक की तेज बैटिंग के बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम पहले मैच के मुकाबले में ज्यादा बड़ा हदफ देने में कामयाब रही। 232 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 44वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। उबूरी कप्तान जॉश एंग्लिस का कहना था कि उनकी टीम को महसूस हुआ कि ये स्कोर जीतने के लिए काफी है।
2: Yeah, I think mostly it was probably on the batting front. I know guys had some good conversations around training yesterday just about individual

0: अभी आप सुन रहे थे नबील शौकत अली की आवाज़ में ये गीत, और एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनवाएंगे कि स्कूलों, दफातर और दीगर अवामी मुकामात पर आप ऑस्ट्रेलिया के कौमी झंडे के साथ जो एक और झंडा देखते हैं, सुर्ख, सियाह और पीले रंग का झंडा, उसकी तारीख क्या है और इंडिजीनियस लोगों से उसका कल्बी ताल्लुक़ क्या है। इसके अलावा आपको कैनबरा भी लिए चलेंगे और वहाँ भारतीय और पाकिस्तानी लोगों ने मिलके कव्वाली की एक खूबसूरत बज़्म सजाई, उसका जिक्र रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के हालात हाजरा की बात होगी और ऑस्ट्रेलिया आए हुए मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से खूबसूरत बातें और उनकी गीतों की झलकियों के साथ कुछ ना कुछ आपके लिए शेर व सुखन का रंग लेकर आएँगे। ये सब कुछ थोड़ी देर बाद। आइए चलते हैं एक वक्फे की तरफ, मगर हमारे साथ रहिएगा।
1: अपने फोन पर प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट सुनने का बेहतरीन जरिया SBS ऑडियो ऐप है। एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त डाउनलोड कीजिए। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स और दीगर खेलों के दीवानों की पहली मंजिल SBS स्पोर्ट्स, sbs.com.au/sports पर जाइए। इनसाइड SBS का हालात हजरा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूदात को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS टीवी पर चैनल 30, SBS वाइसलैंड या चैनल 31 पर देखिए।
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS फूड के जरिए दुनिया भर के खाने आपके दस्तरखान पर, खानों की हजारों रेसिपीज, आर्टिकल्स और वीडियोस देखने के लिए sbs.com.au/food पर जाइए।
0: आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान अलवी, और आइए अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की तरफ। और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आज जिक्र है एब ओरिजिनल झंडे का, यानी इंडिजीनियस फ्लैग का।
4: सामीन, क्या आपने ऑस्ट्रेलियन परचम के साथ सुर्ख, सियाह और पीले रंग का झंडा लहराते देखा है? ये एब ओरिजिनल झंडा है। ये ऑस्ट्रेलिया के मकामी लोगों और ज़मीन, बरादरी और कहानियों से उनके ताल्लुक की नुमाइंदगी करता है। बहुत से लोगों के लिए एक झंडे से ज्यादा है। ये ताकत, बका और शनाख्त की अलामत और याद दहानी है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक नामजद कौमी परचम मौजूद है, सरकारी तौर पर 3 परचमों को पहचाना जाता है जिनमें एबोरिजिनल और टोरेस आइलैंडर झंडे शामिल हैं। एबोरिजिनल झंडा हमेशा से मौजूद नहीं था। ये झंडा 1971 में लोरेटेजा और मुंबई के फनकार और कारकुन अंकल हेरोल्ड थॉमस ने डिजाइन किया था, जो जुनूबी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल ऑफ आर्ट के पहले एबोरिजिनल ग्रेजुएट थे। इसे पहली बार 12 जुलाई 1971 को एडिलेड में जमीनी हुकूक के एहतजाज के मौके पर लहराया गया था, जिसे उस वक्त नेशनल एबोरिजिन्स डे कहा जाता था। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसे अब फरसूदा समझा जाता है।

0: एक साल बाद ये कैनबरा में एबोरिजिनल टेंट एम्बेसी में एक ताकतवर अलामत के तौर पर सामने आया जो जमीन के हुकूक और कुदरतियत की नुमाइंदगी करता था। 1995 में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इसे बाजाब्ता तौर पर ऑस्ट्रेलिया के परचम के तौर पर तस्लीम किया। इसका डिजाइन सादा लेकिन बामानी है, मकामी लोगों के लिए सियाह रंग है, मुल्क के लिए और जमीन से ताल्लुक के लिए सुर्ख, जबकि जिंदगी के मरकज में सूरज की निशानदही के लिए एक पीला दायरा मौजूद है। गोमरोई खातून और उभरती हुई आर्टिस्ट जेड ब्रेनन बताती हैं कि वो झंडे में क्या देखती हैं।
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation.
0: वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं समझने के लिए हम वनारा खातून आंटी सोजेन कैंडल से सुनते हैं। वो 1960 से 70 की दिहाई में न्यू साउथ वेल्स के इलाकाई कब्जे कॉन्टबोलन में पली बढ़ी। वो एक वक्त याद करती हैं जब झंडा वसी पैमाने पर नहीं देखा जाता था। उनकी एबोरिजिनल परचम की पहली याद स्कूल या काउंसिल के दफ्तर में नहीं है बल्कि इसका टेलीविजन पर नजर आना है।
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: उनकी नस्ल के लिए झंडा वो चीज है जो आप एहतजाज या टीवी पर देख सकते हैं। ये अभी तक रोजमर्रा ऑस्ट्रेलिया का मामूल का हिस्सा नहीं है। ये तुम्हारे लोग हैं, जेड ने झंडे के साथ बड़े होते हुए कहा। नौजवान एबोरिजिनल लोग जैसे जेड के लिए तजर्बा बहुत मुख्तलिफ है। वो अपने इर्द गिर्द एबोरिजिनल परचम के साथ बड़े होते हैं। जेड ने अपने बचपन मेट्रोइल सिडनी के मशरक में गुजारा। वो एक दीवार पर बनी तस्वीर को बहुत वाज़े याद रखती हैं।
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: जैसे जैसे जेड बड़ी हुई, झंडा रोजमर्रा के अंदाज में जाहिर हुआ.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: उनके लिए झंडा इसे दूसरे हुजूम और इत्तेहादियों को पहचानने में मदद करता है। ये उन्हें बताता है कि उनके साथ कौन खड़ा है, यहाँ तक कि हुजूम में भी। जब 1995 में एबोरिजिनल झंडा ऑस्ट्रेलिया का सरकारी झंडा बन गया तो आंटी सुजैन ने पहले छोटी तब्दीलियों को वकू पजीर होते देखा।
2: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: वक्त के साथ झंडा नायाब से मामूल की तरफ मुंतकिल हो गया।
2: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that.
0: अब जब आप Aboriginal परचम देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये किस चीज की नुमाइंदगी करता है और इसकी तारीख क्या है। इस सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड और मैं हूँ वर्दा वकार।
4: अभी आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन की और भी बहुत सी किस्तें हैं जो हमारे वेब पेज के ऊपर आपको मिल जाएंगी sbs.com.au/urdu पर, और हमारा उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में वर्जन में हमारा वेब पेज मौजूद है। इसके अलावा हम फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, जहाँ हम वीडियोज़ भी आपके लिए पोस्ट करते हैं और रोज़ाना हम खबरों का एक मुख्तसर बुलेटिन भी आपके लिए लेकर आते हैं। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं कैनबरा। कैनबरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भारतीय नजात कव्वाल के साथ कव्वाली की बज़्म सजाई, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। तकरीब का आंखों देखा हाल सुनिए मोहम्मद रियाज से, जो वहीं मौजूद थे।
5: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
6: सामईन, इस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद रियाज। इस खसूसी पॉडकास्ट में हम आपको लिए चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में, जहां पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक रंगारंग कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में ऑस्ट्रेलवी कवाल ग्रुप ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के जरिए कवाली की रिवायती सिनफ को पेश किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस मौके पर मुंतजमीन कहते हैं कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी और बरसगीर की सकाफती रवायात को फ़रोग देना है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम नौजवान नस्ल और तलबा को कवाली जैसी क्लासिक मौसीकी और सूफियाना रिवायत से रोशनास भी कराना है। इस

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैं मोहम्मद रहीम शामी, प्रेसिडेंट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। मेरे साथ मेरी वाइस प्रेसिडेंट आयुषा इम्तियाज एंड हेरा मौजूद हैं। हम आज की कवाली होस्ट, वी आर द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द कवाली नाइट। हम स्टूडेंट्स हैं, वी आर द पार्ट ऑफ यूसी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। हमने कम्युनिटी के लिए सेकेंड बड़ी कवाली होस्ट कराई है और ये पहली बार हुआ है कि किसी एसोसिएशन ने कराई है। And I would like our VP to say something.
1: That's about it. This is the biggest one event that we have in this semester. I hope you all enjoyed it. Amazing.

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद मोंगा है और मैं मोंगा ग्रुप का ओनर हूँ। हम लोगों ने इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के अंदर ये पाकिस्तानी यूसी स्टूडेंट एसोसिएशन में राहिम शामी ने बहुत अच्छी ये महफिल सजाई, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कव्वाल हैं ये कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ फिजी से हैं। इससे उनकी महफिलें यहाँ पर होनी चाहिए ताकि इस तरीके से हमारे बच्चे और हम लोग एटलीस्ट हम पाकिस्तान का मज़ा यहाँ पर उठा सकते हैं इस किस्म की कव्वालियों के साथ जो हमारे कल्चर और सूफिज़म का हिस्सा है।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ारा हूँ कैनबरा से, और इस तरह के इवेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिफ्रेशिंग है। यहाँ पे आते हैं हम, अपने कल्चर से क्लोज होते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं इस कल्चरल इवेंट को प्रमोट करने के लिए। सारे स्पॉन्सर्स ने, सारे जो यहाँ पे ऑडियंस आए हैं टिकट्स लेकर, रियली थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग अस सच नाइस एंटरटेनमेंट। थैंक यू।

0: variety of different food stalls. And then we have the koalas as well. They came all the way down from Sydney, I believe. So we're having a very good time, and we hope to have many more events like this to bring the Pakistani community together in Australia.
1: हमारा काम सिर्फ गाना नहीं है, एक्चुअल में हमारा जो मानना है कि हम लोग एक पैगाम लेके आ रहे हैं, और वो जो बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान में बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, और मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम लोग ये पैगाम पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो नई हमारी जनरेशन है उनको भी मालूम पड़े और वो इस फन में ऑलवेज इन रहे।
2: आपका पसंदीदा कवाल कौन सा
1: है? जो मेरा मनपसंद कवाल है वो जी आप सब जानते हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, और उनको सुन सुन के ये थोड़ा सा कुछ रहे हम लोग आपको, जैसे आपने अभी फर्स्ट हाफ में सुना है, और कोशिश जारी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, हम लोगों को बहुत फेस होता है ये क्वेश्चन। देखें, जहाँ पे मैं समझता हूँ जहाँ पे उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ है वो सब गाए हुए उनकी चीज़ें हमारी मनपसंद।
2: और आपको कोई पसंदीदा तो बहुत बताइए?
1: हाँ जी, वो हम लोग अल्लाह हूँ मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो उनका कलाम है अल्लाह हूँ जी।
3: Assalamualaikum everyone, my name is Natalia and I wanted to tell you about my experience at UC Qawwali night, and it's been fun. I love the food, I love the songs. You should definitely come next year.
4: थैंक यू नतालिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान है, मैं नतालिया का बड़ा भाई हूँ। नतालिया यहाँ पढ़ती है अभी। आई एम एन अलमना हियर एंड आई केम हियर लास्ट टाइम एज वेल। बोथ टाइम दिस बीन अ हिट ऑफ एन इवेंट एंड आई वुड रिकमेंड फॉलोइंग यूसीपीएसए एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।
5: सामीन मुंतजमीन समेत शुरका की गुफ्तगू आपने समाप्त की, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।
6: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
7: अभी आप कैनबरा में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से कव्वाली की बज़्म के बारे में एक रिपोर्ट सुन रहे थे, और इस पॉडकास्ट की वीडियो रील भी आप जल्द ही SBS उर्दू के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे। एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हालात हाजरा में सुनिएगा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम और पाकिस्तान में बजट, और इसके अलावा अलीमा खान की डील की खबरों की तरदीद। इसके अलावा भी बहुत कुछ, मगर एक वक्फे के बाद।
8: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त, या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए। NITV के जरिए उन मसाइल से आगाही हासिल कीजिए जो एब ओरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद के लिए अहम हैं। NITV चैनल 34 पर या SBS ऑन डिमांड पर देखिए। माहिर उस्ताद शागिर्दों को आगे बढ़ाने के लिए नित नए तरीके ढूंढते हैं। SBS लर्न पर असाध्या के लिए निसाब के मुताबिक पढ़ाई का वसी जखीरा मौजूद है। sbs.com.au/learn पर जाइए। NITV का द पॉइंट, हिकमत अमली और तजियों पर मबनी इंटरव्यूज, एब ओरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत, सियासत और माशरती मसाइल का अहाता, किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। SBS TV और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए। sbs.com.au/guide पर जाइए। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों TV शोज और फिल्में मुफ्त स्ट्रीम कीजिए। किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर देखने के लिए SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर जाइए। SBS चिल पर पूरी दुनिया की मूसीकी का लुत्फ उठाइए। SBS ऑडियो ऐप पर SBS चिल सुनिए। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड नए तारकीन वतन को रिहाइश, सेहत, रोजगार और दीगर मौजूदात पर मालूमात फराहम करता है। sbs.com.au/australiaexplained पर जाइए।
7: SBS की उर्दू नशरियात में मैं हूं रेहान अलवी, और आइए अब आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं और करंट अफेयर यानी हालात हाजरा में सुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम का हवाल। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बाजगश्त, और बजट से पहले अहम

0: कहते तो नहीं में रखा हुआ है, ये अंदर कहाँ जाएगा, कोई भी नहीं गया। ये जान के डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा बिल्कुल फेक है बात ये। जब इनको डर लगता है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहे हैं, तो उसको जब ठंडा करने के लिए ये बातें शुरू हो जाती हैं, डीले हो रही हैं।
1: उधर अडयाला जेल में ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान से असगर हयात ने पेश की।
2: अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान रिपोर्ट, और हालात हाजरा के ऊपर हम और भी बहुत से सेगमेंट करते रहते हैं, और अक्सर व बेशतर आपने हमारे फेसबुक पेज पे और वेब पेज के ऊपर इसे देखा होगा। सबसे अच्छा ज़रिया हमारे वेब पेज पर जाइए www.sbs.com.au/urdu। इसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मौजूद है, आप उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए मुफ्त दस्तियाब ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके इस पर उर्दू लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, इस तरह आप उर्दू प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आइए आपको एक भूले बिसरे गीत की तरफ ले चलते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये गीत है अखलाक अहमद की आवाज़ में, मूसीकी रॉबिन घोष की, फिल्म दो साथी, पिक्चराइज किया गया ये रहमान और शबनम पर, और इस गीत के बोल हैं, देखो ये कौन आ गया।

0: अभी आप सुन रहे थे अखलाक अहमद की आवाज़ में फ़िल्म दो साथी का ये गीत, और एक वक्फ़ा ले रहे हैं और ये आखिरी वक्फ़ा है, और इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे लोक मूसीकी और पॉप में गाने वाले मारूफ गुलोकार सलीम जावेद से, जो ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे और उनकी 80 की दहाई में बड़ी धूम मची हुई थी और उनकी जुगनी भी बड़ी मारूफ रही थी। उनकी बहुत से गीतों की झलकियों के साथ हम आपको उनका इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, मगर पहले एक वक्फ़ा, इसके बाद ये तमाम दिलचस्पी।
1: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
0: SBS Food चैनल 33 पर आपके लिए लेकर आता है मुकामी और बैन अलाक्वामी माहिरीन के जरिए दुनिया भर के खुश जायका खानों का लुत्फ। SBS Food 24 घंटे में किसी भी वक्त चैनल 33 पर। इनसाइड SBS का हालात हजरा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। इनसाइड SBS का हालात हजरा का अवार्ड याफ्ता शो उन जरूरतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। NITV का द पॉइंट हिकमत अमली और तजियों पर मबनी इंटरव्यूज एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत, सियासत और माशरती मसाइल का अहाता किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS उर्दू के साथ मैं हूँ रेहान अलवी। आइए वक्त ज़ाय किए बगैर अब आपको लिए चलते हैं गुलोकार सलीम जावेद के इंटरव्यू की तरफ। वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी कारगी के बायस यहाँ भी बहुत मशहूर रहे, उनकी SBS उर्दू से की गई गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं।

0: आपके कैरियर के कौन से ऐसे पहले बड़े हिट गीत थे?
1: पहला तो मेरा जो डेब्यू एल्बम था 1985 में लॉन्च हुआ था, वो लिसन टू माई वॉइस नाम था उसका। वो एल्बम डेब्यू एल्बम पे आप डिपेंड करते हैं, जैसे कोई मूवी आती है किसी एक्टर की तो वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो हिट होती है तो फिर उसका करियर शुरू हो जाता है, अगर वो फ्लॉप होती है तो उसका करियर चला जाता है। तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान में यही देखा गया है। मगर मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो पहली एल्बम थी उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ। एक तो रिमिक्स का दौर नहीं था, लोगों को पता ही नहीं होता कि रिमिक्स एक पुराना गाना उसको उठा के उसकी शक्ल चेंज करना, उसका म्यूजिक चेंज करना और उसको अलग स्टाइल में गाना। तो अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि इसका नाम एक जमाने में आके रिमिक्स लोगों पड़ जाएगा। हमने एक नया म्यूजिक कोशिश की थी जब वो मार्केट में आया, और यही हमने बलोची गाना एक था मेरा लैला ओ लैला, जो वैसे तो बहुत पुराना फोक है वो, फैज मोहम्मद बलोच साहब का। तो मुझे वो म्यूजिक बड़ा लड़ता था हमेशा से, मैं बोलता था यार ये कितना अच्छा गाना है मगर मुझे ये समझ में नहीं आता ना, क्योंकि बलोची जबान बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, मगर वो म्यूजिक इतना अच्छा था, वो उसको झूमने को दिल चाहता था। तो मैंने सोचा कि इस गाने को एक दो साल में रिमिक्स लोग पुकारने लगे जी। तो मेरे लकीली वो मेरे हिस्से में आ गया कि मैं पाइनियर में से हूँ रिमिक्स सॉन्ग का, भंगड़ा पाकिस्तान में लाने का, मैं उसके अंदर आ गया।
0: हमने 1985 का जिक्र किया, उस वक्त में और भी बहुत से आपके हम असर गुलकार पॉप स्टार्स थे जिनको हम आज नहीं देखते, वो गोशा नशीन हो चुके हैं या किसी और वजह से अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मुसीकी के इस तवील सफर में यकीनन कई चैलेंजेस भी आए होंगे, तो एक फनकार के तौर पर सबसे मुश्किल मरहला कौन सा रहा, और ये दोबारा से री एमर्ज होने का ये तजुर्बा करने में क्या चैलेंजेस रहे?
1: कोई भी नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत से एक जगह पर आया हूँ और मैं वो बादशाह की सीट छोड़ दूँ। वक्त शोबिज़ का ऐसा जालिम है, उम्र ऐसी चीज एक है, एज फैक्टर जो आता है ना जिसे हम कहते हैं, वो आना ही आना है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपने रख रखाव से, अपने तौर तरीकों से, अपनी कुर्बानियों से शोबिज में जो है बहुत सारी चमक धमक बहुत है। जो शो का नाम है ना शो, शोबिज, वो चमक बहुत है इसमें। तो कभी कहीं आदमी चमक के अंदर खो जाता है, उसको एहसास नहीं हो पाता। तो वो शोहरत और पैसे दो एक ऐसी चीज होती है, दो के किसी एक आदमी को एक भी चीज मिल जाए, ये पैसा ही मिल जाए, तो गरीब आदमी को पैसा मिल जाए तो वो फिर उसको काबू नहीं कर पाता। तो मेरे साथ अल्लाह का बड़ा कर्म रहा है कि मैं शुरू से नमाज से जोड़ा रहा हूँ। तो जो बहुत सारी ऐसी बुराइयां, बहुत सारी वो चीजें थी शोबिज़ की होती हैं, अल्लाह ने उससे मुझे बचा के रखा है। एक तो मेन तो ये फैक्टर इसका, और फिर मैं काम करता रहा हूँ। मैंने हर दौर में ना, मैंने बहुत तकलीफों के साथ ना ये हासिल की है ये जगह ना, तो मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, नया म्यूजिक लेके आना है और अपने आप को भी ना वो दोबारा से ना नित नए स्टाइल में लाना है। जैसे अगर आप, एज तो मेरी बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है फैक्टर के साथ साथ, मगर आप उसको अपने आप को ना ग्रूम करें थोड़ा सा, कि हमने देखा बड़े बड़े 70-70 साल के लोग इतने हसीन लगते हैं, तो वो अपने आप को ख्याल रखते हैं। मैं ग्रूम करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, खाने पीने का कंट्रोल करता हूँ, ख्याल करता हूँ। फिर म्यूजिक के अंदर ना मैं इन रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बस मेरी असल जो पावर है ना वो है स्टेज की, क्योंकि लोग हिट तो हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनका सीन ही होता है कि वो फिर गा नहीं सकते लाइव आके, लाइव गाना एक होता। तो मैंने शुरू लाइव शो से ही किया था, बाद में कैसेट्स आई, बाद में फिर टीवी पर आया।
0: और कौन सी चीज है ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जिसने आपको मुतासिर किया?
1: एक तो ना पीसफुल माहौल है यहाँ का ना, बहुत अफरा तफरी नहीं, भगदड़ नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, डिसेंट लोग हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पे ना। तो और फिर यहाँ का जो सिस्टम है, जो यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसने बड़ा कंट्रोल किया और बड़ी अपने लोगों के लिए ना बड़ी वो ख्याल कर। तो मुझे ये चीज इतनी अट्रैक्ट की कि यार ये कैसे लोग हैं कि ये अपनी कौम के लिए ऐसा सोच रहे हैं।
0: जनरेशंस को मुतासिर किया है, तो आपने बहुत से वो दौर देखे हैं जब लोगों के प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ होते थे। अब एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, जहां लोग फौरी रद्द अमल देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोगों को तंकीद और ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ता है। आप

0: अल्लभ से मिलना तेरी जुगनी, हाय सोनिया तेरी जुगनी, मोला वाले या तेरी जुगनी।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे मारूफ गुलकार और सलीम जावेद से की गई बातचीत। उनकी जुगनी बड़ी मशहूर रही है, आइए उसकी झलक आपको सुनवा देते हैं।

अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हुए गुलकार सलीम जावेद का इंटरव्यू सुन रहे थे, और यहाँ आपको याद दिलाएं कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। और ये भी एक आपके लिए याद दहानी कि हमारे बहुत सी वीडियोज़ और रील्स भी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेजेस पर पेश करते हैं, instagram.com/sbsurdu, facebook.com/sbsurdu या youtube.com/@sbssouthasian/urdu पर जाइए। और इसके अलावा आपको लाइव स्ट्रीम और प्रोग्रामों के मुंतखब हिस्से sbs.com.au/urdu पर मिलते हैं। आप हमें फेसबुक और पर भी पाएंगे, जहां पर मौजूद हैं वीडियोस, अहम खबरों की डेली पोस्ट, तस्वीर के एल्बम्स, ब्रेकिंग न्यूज़ और ऑस्ट्रेलिया भर की कम्युनिटी खबरें। हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बिल्कुल मुफ्त मौजूद है। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर और फिर उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए उसमें अपनी फेवरेट लैंग्वेज के तौर पर, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी हमारा नया पॉडकास्ट पब्लिश होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब नया प्रोग्राम हमारा जा रहा होगा ऑन एयर तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसमें एक अंग्रेज़ी का सेक्शन भी मौजूद है। अगर आप उर्दू समझ सकते हैं मगर

नहीं सकते तो आप उस सेक्शन में जाके उर्दू के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हम बहुत सी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत से अदाकारों शोबिज़ के अहम अफराद की वीडियोस भी मौजूद रहती हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। अब नशरियात बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ पहुँच रही हैं और हम अब आपसे जुमे को फिर मिलेंगे और उसके बाद बुध को दोबारा मुलाकात होगी। और हमारा प्रोग्राम जी जो अगर आप वेब पेज पर सुनना चाहें कैचअप के ज़रिए तो उसे भी आप उर्दू रेडियो पॉडकास्ट सेक्शन में पाएंगे और जब तक नया प्रोग्राम नहीं आ जाता तब तक वो मौजूद रहता है। तो मुझे तो आप इजाज़त दीजिए, अली ज़फ़र को मैं आपको सुनवा रहा हूँ, ये वही गीत है जिसका थोड़ी देर पहले सलीम जावेद जिक्र कर रहे थे, लैला ओ लैला, जिसे कोक स्टूडियो के लिए अली ज़फ़र और रूज फातिमा ने मिलके गाया। रूज फातिमा बिल्कुल बलोची गुलोकारा हैं, छोटी सी बच्ची थी उस वक्त, 12 साल की उम्र थी उनकी जब ये वीडियो रिलीज़ हुई। उनको सुनिए और मुझे यानी अपने मेज़बान रेहान अलवी को यहीं पर इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया अल्लाह ने के बान।

0: सी, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी कर दिता सी। सलमान ने दोना नाल फोन ते गल कीती आते दोना दा वखो वख पक्ष सुनिया। सलमान खान ने फरार अख्तर नु कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री विच क्रिएटिव डिफरेंसेस होना बेहद आम गल है, इस नु लेके विवाद नु होर ज्यादा वधाना ठीक नहीं है। उन्होंने फरहान नु सलाह दी है कि वो इस मामले नु इत्थे ही खत्म करन। सलमान खान ने दोना नु कहा है कि जद पूरा मामला पूरी तरह दे नाल शांत हो जाएगा तो उन्होंने भविष्य विच मुड़ तो एक दूजे दे नाल काम करन दे लई तैयार रहना चाहिदा है। डायरेक्टर इम्तियाज अली इन्हीं दिनी अपने आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा नु लेके चर्चा विच ने। उन्होंने फिल्म दे गाने मस्कारा दी शूटिंग नु लेके एक मजेदार किस्सा दसिया। उन्होंने दसिया कि इस गाने दी शूटिंग पंजाब दे मलेरकोटला शहर विच कीती गई, जो मशहूर गीतकार इरशाद कामिल दा होम टाउन है। ए वही शहर है जिथो इरशाद कामिल ने अपने सुपने दी शुरुआत कीती।
1: किस्मसियारा लाई मस्कारा अखियां लगाई रखना, किस्मसियारा लाई मस्कारा लगियां निभाई रखना।
0: एक्टर ईशान खट्टर, हॉलीवुड एक्टर क्रिस्टन स्टीवर्ट अते कई होर मन्ने परमन्ने नावां दे नाल बियारित्स फिल्म फेस्टिवल दे चौथे एडिशन विच ज्यूरी पैनल विच शामिल होंगे। ईशान खट्टर दे इंटरनेशनल करियर दी शुरुआत उन्हां दी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स दे नाल हो गई सी। इस तों बाद उन्हां ने 2021 विच लियोनार्डो डिकैप्रियो अते जेनिफर लॉरेंस स्टारर फिल्म डोंट लुक अप विच एक कैमियो भूमिका निभाई। 2020 विच उन्हां ने मीरा नायर दी ब्रिटिश सीरीज असुचेबल बॉय विच तब्बू दे नाल मुख भूमिका निभाई सी। उन्हां दी 2025 विच आई फिल्म होम बाउंड नूं ऑस्कर दे लई भारत दी आधिकारिक एंट्री दे रूप विच चुनिया गया सी अते इस नूं शॉर्टलिस्ट भी किया गया सी। फिल्म प्रोड्यूसर वासु भगनानी दी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने टिप्स इंडस्ट्रीज अते फिल्म मेकर डेविड धवन दे खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट विच 400 करोड़ रुपए दा केस किया है। ए विवाद वरुण धवन दे आउण वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है विच 1999 दी हिट फिल्म बीवी नंबर 1 दे दो गाणियां दे इस्तेमाल नु लेके है। वासु भगनानी दा दावा है कि टिप्स दे कोल इना गाणियां दे विजुअल राइट्स नहीं ने। उन्होंने फिल्म दे रिलीज़ रोकण अते इसदा टाइटल बदलण दी मांग कीती है। फिल्म 5 जून 2026 नु रिलीज़ होण वाली है। इस विच बीवी नंबर 1 दे दो मशहूर गाने चुनरी चुनरी अते इश्क सोना है नु रिक्रिएट किया गया है। हिंदी फिल्म संगीत दी जद भी गल हुंदी है तां बॉलीवुड दे मशहूर सिंगर शान दा जिक्र जरूर हुंदा है। शान ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल विच मशहूर गीत बाहों में चले आओ नू बॉलीवुड दा सब तो मॉडर्न गाना दस्या। उन्होंने कहा कि इस गाने विच जो संगीत भावनावां अते बदला है उस तरह दा अज बहुत घट वेखण नू मिलता है। शान ने कहा कि मेरे हिसाब दे नाल पुराने दौर दे कई गाने अज दे गाणियां तो किते वध मॉडर्न ने। उस दौर दे संगीतकार सिर्फ धुन नहीं बनाउंदे सन बल्कि हर गाने दे पिछे एक कहानी अते भावना छिपी हुंदी सी। शान ने कहा है पंचम दा बॉलीवुड दे सब तो मॉडर्न संगीतकार सन। उन्हां दे बनाए गाने अज भी नवे अते ताजगी नाल भरे लगदे ने।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील. और शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं. आज के शो में सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है. 1 जुलाई से लाखों एम्प्लॉयज़ को 4.75% वेज इंक्रीज मिलेगा, 4.75%, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ वर्कर्स की इनकम में करीब 6% तक की बढ़ोतरी होगी. ट्रेड यूनियंस ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स और अपोजिशन का कहना है कि इससे कॉस्ट बढ़ सकती हैं और महंगाई पर असर पड़ सकता है. माफ़ करिएगा, इसी रिपोर्ट से शो की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें. फिर लेकर आएंगे SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का 3रा एपिसोड जिसमें हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में साइड हसल्स और कैश जॉब्स करने वालों की टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन से लीगल ऑब्लिगेशन ज़रूरी हैं और इससे जुड़े क्या रिस्क होते हैं. तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड ज़रूर सुनिएगा अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ साइड हसल्स या कैश पे जॉब करते हैं. और अंत में सिडनी के ब्लैक टाउन सिटी फेस्टिवल की एक झलक जहां स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में मल्टीकल्चरल सेलिब्रेशंस देखने को मिले. भारतीय समुदाय सहित कई ग्रुप्स ने अपने कल्चर, म्यूजिक और ट्रेडिशंस को एक बड़े ही वाइब्रेंट तरीके से शोकेस किया. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके और बहुत सारे गाने हैं आज, एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी गाने होंगे जो बीच बीच में हम आपके लिए प्ले करते रहेंगे. तो एंजॉय करते हैं का शो और शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यूज फ्लैश के साथ जिसमें है ऑस्ट्रेलिया की कुछ खास खबरें, कुछ भारत से और कुछ विश्व से. बुधवार 3 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के जवान आने वाले हफ्तों में पोलैंड भेजे जाएंगे जहां वो रशिया के साथ चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे. रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिक नॉर्वे के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन में शामिल होंगे जिसमें उन्हें बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स, लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स सिखाई जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया 2023 से यूनाइटेड किंगडम आधारित एक ऑपरेशन के जरिए इसी तरह का समर्थन दे रहा है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि यूक्रेन के पास ट्रेनिंग देना ज़्यादा सही है. एक डिफेंस

0: एन समिट में रिचर्ड माल्स ने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देना रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप पनडुब्बी समझौते में हाल ही में हुए बदलावों का बचाव किया है। जबेड ह्यूजिक ने कहा कि सरकार को इस पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। लेबर पार्टी के बैकबेंचर ने कहा कि पार्टी के अंदर इस समझौते को लेकर कुछ असंतोष है और उन्होंने सरकार से अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने की अपील की है। रक्षा समझौते को लेकर चिंताएं तब और बढ़ गईं जब ये घोषणा हुई कि ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से केवल सेकेंड हैंड न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियां ही खरीदेगा। हालांकि चैनल 9 के टुडे शो में बातचीत के दौरान पेनी वोंग ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह के वोट की संभावना को खारिज कर दिया। पूर्व कैनबरा लिबरल्स नेता लियान कैसले ने पार्टी से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पद छोड़ने के 7 महीने बाद उठाया है। यरबी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लियान कैसले ने कहा कि पार्टी में टॉक्सिक कल्चर है और अब वो इसका हिस्सा नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि अब वो इंडिपेंडेंट के रूप में काम करेंगी और उन्होंने 18 महीनों तक बुलिंग, इंटिमिडेशन, झूठ और धमकियों का सामना करने का आरोप लगाया है। लिबरल नेता मार्क पैटर्न ने टॉक्सिक कल्चर के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन कहा है कि संगठन ने बुलिंग से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स से जुड़े स्कैम्बलिंग स्कैम्स में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। टेलस्ट्रा के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डैरन पॉली ने कहा कि तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन खतरों में स्कैम गैम्बलिंग यानी अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट से जुड़े स्कैम्स भी एक हैं, जहां लोग पहले से ही हर साल लगभग $2.2 अरब अलग अलग तरह की फाइनेंशियल ठगी में खो देते हैं। ये स्कैम्स अक्सर आसान जीत का लालच देते हैं और फिर लोगों को पे आई डी जैसे माध्यमों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, जिससे पीड़ितों को आर्थिक नुकसान के साथ उनके बैंकिंग डिटेल्स और पहचान दस्तावेजों का भी खतरा होता है। टेलस्ट्रा ने कहा कि उसने इस साल लगभग 1800 गैम्बलिंग से जुड़े डोमेन्स ब्लॉक किए हैं, जिससे 2 मिलियन से अधिक संभावित विजिट्स रोकी गई हैं। ईरान और अमेरिका दोनों ने मिसाइल हमले किए हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर गल्फ रीजन में हमले करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि उसने बहरीन में स्थित US 5th फ्लीट के मुख्यालय को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान के खश्म आईलैंड पर सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए, जो तेहरान की ओर से किए गए कथित हमलों के जवाब में थे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। और अब खबर भारत से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके 6 जून को दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वो जनता के समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया है और कहा है कि उन्हें ये संगठन देशभक्त और देश सुधार के लिए त्याग करने वाला लगा। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने इस समूह पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में अभिजीत डिपके से बातचीत और समर्थन से जुड़े आंकड़े देखने के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि इसका कोई छिपा उद्देश्य नहीं है। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट आपके लिए प्ले करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4.75% वेतन वृद्धि मिलेगी, जबकि सबसे कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों की आय लगभग 6% तक बढ़ेगी। श्रमिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन व्यापारिक समूहों और विपक्ष का कहना है कि इससे व्यवसायियों पर दबाव बढ़ सकता है और भविष्य में महंगाई पर भी असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
1: ऑस्ट्रेलिया में लाखों कर्मचारियों को जुलाई से वेतन में 4.75% की बढ़ोतरी मिलने वाली है। ये फैसला फेयर वर्क कमीशन की वार्षिक वेतन समीक्षा के बाद आया है। श्रमिक संगठनों ने इस बढ़ोतरी का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। वहीं व्यापारिक संगठनों का कहना है कि इस कदम से महंगाई और बढ़ सकती है तथा व्यवसायों, खासकर छोटे कारोबारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस खबर को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों कर्मचारियों को 4.75% वेतन वृद्धि मिलेगी।

0: फेयर वर्क कमीशन ने अपनी वार्षिक न्यूनतम वेतन यानी एनुअल मिनिमम वेज और अवार्ड वेतन दरों की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया है। फेयर वर्क कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने इस निर्णय की घोषणा की। नई वेतन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
1: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: पिछले वर्ष 3.5% वेतन वृद्धि और अप्रैल में 4.2% की वार्षिक महंगाई दर के बाद वास्तविक वेतन और महंगाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार जून के अंत तक महंगाई 4.8% तक पहुंच सकती है। ऐसे में इस अंतर को पाटने के लिए 5% वेतन वृद्धि आवश्यक मानी जा रही थी। हालांकि जस्टिस हैचर ने कहा कि आयोग का मानना था कि इतनी बड़ी वृद्धि देना ना तो विवेकपूर्ण होगा और ना ही व्यावहारिक।
1: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
0: जीवन यापन की बढ़ती लागत यानी बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग इस निर्णय के केंद्र में रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई का असर घर परिवारों के बजट पर गहराई से पड़ रहा है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फेयर वर्क कमीशन ने सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वेतन वृद्धि की घोषणा की। कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एडम हैचर ने कहा कि सबसे निचले स्तर की मॉडर्न अवार्ड वेतन श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के कारण सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वास्तव में लगभग 6% तक वेतन वृद्धि मिलेगी।
1: System applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
0: Australian Council of Trade Unions यानी ACTU ने वेतन में 6% वृद्धि की मांग की थी, जो मंजूर होने पर रिकॉर्ड की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होती। हालांकि आयोग ने इससे कम वृद्धि को मंजूरी दी, फिर भी ACTU की अध्यक्ष सैली मैकमैनस ने कहा कि फैसले का स्वागत किया गया है।
2: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living, and they need this pay rise absolutely. This will allow them to not just pay their bills, but to start making up some of what they've lost since 2021. One of the big things that the Fair Work Commission said today is that they recognise that previous inflation after COVID left low-paid workers behind where they were in 2021. And so today they've decided not just that people should keep up with cost of living, with inflation, but start to continue to get ahead. And that's really, really welcome.
0: वहीं नियोक्ता संगठनों यानी एम्प्लॉयर ग्रुप्स ने वेतन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी की मांग की थी। उनका तर्क था कि 6% की वृद्धि से व्यवसायों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ACCI ने 3.5% वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। संगठन का कहना था कि अप्रैल में 3.4% रही अंतर्निहित महंगाई दर यानी अंडरलाइंग इन्फ्लेशन वेतन वृद्धि तय करने के लिए अधिक उपयुक्त मानक है। ACCI के नीति प्रमुख डेविड अलेक्जेंडर का कहना है कि इस फैसले के बाद कई व्यवसायों, विशेषकर छोटे और मध्यम कारोबारों को अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
3: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
0: फैसले से पहले फेडरल सरकार ने सतत और संतुलित वेतन वृद्धि की वकालत की थी, लेकिन उसने किसी निश्चित प्रतिशत की सिफारिश नहीं की थी। फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने कहा कि ये वेतन वृद्धि वही है जिसकी ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को आवश्यकता थी और जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला कामगारों को बढ़ती जीवन यापन लागत से राहत देने में मदद करेगा।

0: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
1: हालांकि इस फैसले का सीधा असर लगभग 5 में से 1 कर्मचारी पर पड़ेगा और ये राष्ट्रीय वेतन व्यय यानी नेशनल वेजेस बिल का केवल 11.2% हिस्सा ही है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांगों पर पड़ सकता है। विपक्ष के रक्षा मामलों के प्रवक्ता जेम्स पैटरसन ने स्काई न्यूज से कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ये वेतन वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन लंबे समय तक इसे टिकाऊ नहीं मान सकते। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती वेतन लागत भविष्य में व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है।
2: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
1: SBS न्यूज़ से सिडनी लैंग की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।

0: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
1: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
2: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
3: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
2: SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS चिल सुनने के लिए SBS ऑडियो ऐप पर जाएं।
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और इंडिया रिपोर्ट सुनेंगे जिसमें भारत की कुछ खास खबरें आपको लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले आज के शो का सवाल। और शो का सवाल ये है, और हम एक्चुअली वो जुड़ा है हमारे SBS हिंदी की एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है मनी मैटर्स, जिसमें हम फाइनेंस की जानकारी आपके लिए आसान भाषा में और सरल तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज़ के 6 एपिसोड्स हैं और आज हम उसका 30 एपिसोड आपके लिए प्ले करेंगे। और आज का जो थीम है वो होगा साइड हसल्स या कैश जॉब्स। इसी से जुड़ा है हमारा सवाल कि हम में से कई लोग जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं और अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम कोई ना कोई साइड जॉब, साइड हसल या एक्स्ट्रा कुछ कमाई के लिए कोई ना कोई जॉब हमने शायद करी होती है। वो स्ट्रगलिंग डे में भी हो सकता है और शायद वो एक्स्ट्रा कमाई के लिए भी हो सकता है। तो आप ने ऐसी कौन सी जॉब करी है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बस

0: लिख भेजिए, जैसे कि रेस्टोरेंट में काम करना या शायद कैब ड्राइविंग करना, और 04399799767 हमारा नंबर है, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। और अभी बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं इंडिया रिपोर्ट, जिसमें होंगी भारत की खास खबरें।
1: भारत और वेनेजुएला अपने संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने को लेकर समझौता होने की संभावना है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से भारत की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान ऊर्जा के अलावा स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। 5 दिनों की उनकी यात्रा के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं,
2: During the visit, acting President Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. As part of the program, they will be visiting several sites. India, as you know, India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
1: नेपाल के साथ सीमा विवाद पर भारत ने कहा है कि इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। भारत का बयान ऐसे समय आया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह चीन और ब्रिटेन से दखल देने की मांग कर रहे हैं। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच विवाद के ज्यादातर मामले सुलझा लिए गए हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि 98% सीमा निर्धारण पूरा हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है, फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। गंडक नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। सभी संबंधित पक्षों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इन दिनों विवादों में है। बोर्ड का ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में लगातार किरकिरी को देखते हुए सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनकी जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं वरुण भारद्वाज को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की घोषणा भी हुई है। एक उच्च स्तरीय जाँच समिति बनाई गई है जो OSM में सेवाओं के टेंडर और अलॉटमेंट में गड़बड़ी की जाँच करेगी। सरकार के इस कदम को विपक्ष ने लीपा पोती बताया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी TMC को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से पार्टी में असंतोष गहराता जा रहा है। चुनाव बाद हिंसा में पार्टी नेताओं पर हमले भी हुए हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया। राज्य की नई भाजपा सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए ममता बनर्जी कहती हैं,
3: अगर आप लोकतंत्र को मनाने चाहते हैं तो हमारा लोकतंत्र को परंपरा मान के प्रोग्राम करने दीजिए। हमारा MLA को डॉर मार्क दिखाइए, हमारे लोगों को अरेस्ट मार्क कीजिए। आज 200 से ज्यादा

0: को आपका गवर्नमेंट अरेस्ट जो किया है एक पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार है माइनॉरिटीज कमीशन इसको देखिए, इसको वायलेशन है। चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, गर्ल चाइल्ड को रेप हुआ, एफआईआर करने देता है, एफआईआर करने नहीं दिया।
1: ऐसा माना जा रहा है कि टीएमसी के ज्यादातर विधायक ममता बनर्जी से दूर हो रहे हैं। कल के धरना प्रदर्शन में भी ज्यादातर विधायक नदारत ही रहे। पार्टी के 80 में से 50 विधायक अपना अलग गुट भी बना सकते हैं। भाजपा ने टीएमसी के सारे आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे टीएमसी की आंतरिक कलह का परिणाम बताया है। और अब चर्चा तेलंगाना राज्य की। मंगलवार को राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के गठन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आभार जताया। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना के विकास को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस अवसर पर कहा,
2: जिन्होंने इस तेलंगाना के निर्माण में अपने जीवन की आहुति दी, संघर्ष किया, आज के दिन निश्चित रूप से उनको नमन करने की अपेक्षा नमन करता हूं और साथ ही साथ उनके संघर्षों के लिए निश्चित रूप से उनके सपनों का तेलंगाना जैसा बनना चाहिए शायद अभी भी उस दिशा में हम पीछे हैं और हमारा सपना भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि निश्चित रूप से हम तेलंगाना के विकास के लिए आगे भी संघर्ष करेंगे।
1: तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में आज डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है। डीके शिवकुमार के साथ 12-13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंगलवार को डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में मंत्री परिषद को लेकर आपसी सहमति बन गई है। दलित नेता जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
3: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुनी भारत की कुछ ख़ास खबरें इंडिया रिपोर्ट में, और एड ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एड ब्रेक से पहले एक मैसेज पढ़ेंगे। आज हमने एक सवाल पूछा था कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में या तो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी या कौन सी है जिससे शायद आपने अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमाई की हो। तो ज़फ़र जी का मैसेज आया, वो लिखते हैं कि माई फर्स्ट जॉब वॉज डोर टू डोर सेल्स और बड़ा अच्छा अनुभव था, और उस चीज़ ने, उस डोर टू डोर सेल्स ने, इट हेल्प मी टू नो द रूरल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 04397997767 हमारा नंबर है, उस पर आप भी मैसेज करके बताइए एक एक्स्ट्रा जॉब या शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी पहली जॉब की। और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज हमारी एक खास श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड है, जो एक फाइनेंस सीरीज़ है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरल भाषा में और सरलता से बता पाएँ फाइनेंस से जुड़ी कुछ जानकारी। और आज उसका थीम है कैश जॉब या फिर साइड हसल्स, जो काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टैक्स ऑब्लिकेशन होती हैं और कई और पहलू। तो वो रिपोर्ट आपको सुनाएंगे एड ब्रेक के बाद, लेकिन एड ब्रेक और एक गाना उसके बाद, तो सुनते रहिए SBS हिंदी। मिलता हूँ मैं आपको एड ब्रेक के बाद।
4: इस विज्ञापन को एक नाटी प्रमाणित दुभाषी ने अनुवादित किया है।
5: This ad is interpreted by a Naughty certified interpreter.
4: एक प्रमाणित दुभाषिये के साथ आप जो कहना चाहते हैं उसे हिंदी में ठीक वैसे ही कह सकते हैं।
5: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
4: और आपकी कही हुई बात प्राइवेट रहती है और बदलती नहीं है।
5: And what you say stays private and unchanged.
4: क्योंकि हम सबका ये अधिकार है कि हमारी बात को समझा जाए।
5: Because we all deserve to be understood.
4: एक नाटी प्रमाणित दुभाषीय

0: के लिए पूछें naati.au/interpreter पर और अधिक जानकारी पाएं।
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं। SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
2: SBS स्पोर्ट, खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह, साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
1: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
3: एड ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। और अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले अब मौका हो गया है एक गाने का, तो प्ले करते हैं गाना आपके लिए और उसके बाद वापस आएंगे और प्ले करेंगे आपके लिए मनी मैटर्स का 3rd एपिसोड। तो एंजॉय करिए गाना, मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में।

0: एस बी एस हिंदी पर वापस एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की जो अगली रिपोर्ट है वो है एस बी एस हिंदी की खास श्रृंखला मनी मैटर्स से जुड़ी। आज हम उसका तीसरा एपिसोड प्ले करने वाले हैं और इसी से जुड़ा अशोक का सवाल भी है कि आपने अपनी फर्स्ट जॉब या फिर जो साइड हासिल है जिसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है वो कौन सी करी है ऑस्ट्रेलिया में, और हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप ही प्लीज़ भेजिए 0439-799-767 पर। आज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि साइड हासिल्स और कैश में जो काम करते हैं उनके लिए हमारी टैक्स से जुड़ी कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं या कमिटमेंट्स होती हैं और क्या क्या खतरे भी हो सकते हैं। इस सीरीज को आप तक लेकर आ रही हैं स्वाति शर्मा। आइए प्ले करते हैं मनी मैटर्स एसबीएस हिंदी की फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला का तीसरा एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स
1: एसबीएस हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आपका स्वागत है एसबीएस हिंदी की श्रृंखला मनी मैटर्स के अगले एपिसोड में। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है पर शायद खुलकर कोई पूछ नहीं पाता, साइड हसल्स और कैश जॉब्स के टैक्स इम्प्लिकेशंस। हम में से कई लोग वीकेंड पर ऊबर चलाते हैं, कुछ डोर डैश पर फूड डिलीवर करते हैं, कुछ ट्यूटरिंग करते हैं, या फिर कोई घर से खाना बनाकर बेचता है, या फिर कोई एटसी या इंस्टाग्राम पर चीज़ें बेचता है, और कुछ लोग रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन और क्लीनिंग में भी कैश में काम करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एटीओ को इन सब के बारे में बताना ज़रूरी है? सीधा जवाब तो है हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जहाँ से भी पैसा कमा रहे हों, चाहे वो बैंक में आए या कैश में या फिर किसी ऐप के ज़रिए, उस इनकम को टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और एटीओ के पास आज पहले से भी कई ज़्यादा टूल्स हैं ये पता लगाने के कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुनीत सिंह, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसपीएस हिंदी में। अगर कोई थोड़ा थोड़ा साइड पर कमा रहा है और उसने डिक्लेयर नहीं किया है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और क्या इसे बिना मुसीबत में आए फिक्स करने का कोई तरीका है?
2: जी डेफिनेटली, आज के टाइम पे एटीओ के पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं विद द एनहांसमेंट ऑफ एआई। एटीओ के पास काफ़ी ऐसे टूल्स हैं कि वो डेटा मैचिंग कर सकते हैं, खासकर आपके बैंक्स का एक प्रॉपर रिकॉर्ड एटीओ के पास जाता है। कोई भी इनकम आप ले रहे हो, चाहे वो ऊबर से ले रहे हो, चाहे वो एटसी से ले रहे हो, ये रिकॉर्ड जो होता है वो साझा किया जाता है एटीओ के साथ। खासकर जो ये डिलीवरी राइट शेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनका एग्रीमेंट किया गया हुआ है एटीओ के साथ, दे हैव टू रिपोर्ट ऑल द इनकम टूवर्ड्स एटीओ ऑफ देयर रिस्पेक्ट पीपल। सो आज के टाइम पे अगर आप पैसा कमा रहे हो और आप ये सोचते हो कि एटीओ को नहीं पता लगेगा, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा झूठ है। आई थिंक एटीओ को पता है विद द हेल्प ऑफ डेटा मैचिंग, वो सब जानते हैं ये सारी चीज़ें ट्रेसेबल है। स्वाति, इसे फिक्स करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप इनकम डिक्लेयर की करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ जो आम दिनों में आई होती है, जैसे आप ऊबर चलाते हो, एक ऊबर एक्स चलाते हो, एंड क्या होता है कि ऊबर जब इनकम डिक्लेयर करता है एटीओ को विद डेटा मैचिंग, वो ग्रॉस इनकम शेयर करता है, बट जब जो क्लाइंट होता है वो एटीओ को अपनी जीएसटी लॉज करता है, वो क्या करता है कि जो ऊबर ने अपनी कमीशन काटी होती है उसके बाद जो नेट इनकम होती है उस पर वो जीएसटी, तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है। सो इसलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो क्रॉस इनकम होती है उसी पे आप अपना जीएसटी कीजिए, और जो उनकी कमीशन है उसको आप एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अगर आपने जीएसटी दी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जब ऑडिट्स आने का डर रहता है।
1: एक बहुत बात चलती है कि कैश जॉब एंड नो टैक्स, क्या ये सच है कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में, और कि या फिर ये पूरी तरह से मिथ है? और अगर कोई कैश में जॉब कर रहा है तो एटीओ को पता कैसे चलता है?
2: देखो, एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज़ यहाँ पर ट्रेसेबल है। अगर एक एम्प्लॉय

0: किसी को कैश में दे रहा है, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट एज एन एक्सपेंस, राइट? वो अपने बिजनेस में एक्सपेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा. अगर फॉर एग्जांपल उसका इनकम हो रहा है, एक्सपेंस नहीं हो रहा, तो वहीं पर एक रेड फ्लैग शुरू हो जाएगा. अगर किसी को कैश मिल रहा है, बींग ए सिटीजन और बींग ए टैक्स रेजिडेंट, उसका ये फ़र्ज बनता है कि वो ATO को अपनी सारी इनकम डिक्लेयर करे. ऐसा ना हो कि दो साल बाद उसको ऑडिट आ जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे उसको वो पैसे वापस देने पड़े, जो उसका टैक्स अदा करना उसको वापस देना पड़ सकता है.
1: तो जो लोग अभी अपना कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी है या ट्यूटरिंग है, उन्हें सबसे पहले कौन सी 3 चीज़ें सेटअप करनी चाहिए ताकि वो शुरुआत से ही सही रास्ते पर रहें?
0: जी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एक सही सलाहकार से मिलें, जो एक अच्छा रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हो, जिसको एक्सपीरियंस हो. डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. दूसरा, आपको कौन से स्ट्रक्चर पे जाना है. बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोल ट्रेडर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है, देन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि वो फैमिली ट्रस्ट या यू नो बिजनेस कंपनी सेटअप करे. बट उसमें भी आपको स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं. देर आर क्वाइट गुड रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर यू गो टू दैट. तीसरा हो गया कि अगर आपने उसको किस लेवल तक लेके जाना है. ब्रांडिंग करनी है, आपका एक विजन है, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड वैल्यू पर भी काम करना पड़ेगा. डेफिनेटली बिजनेस नेम भी आपको लेना पड़ेगा, वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी और मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए. अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा सलाहकार आपको मिल जाता है, यू वुड बी एबल टू डेफिनेटली गेट दीज 3 थिंग्स सॉर्टेड.
1: जी पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर, टैक्स स्कैम्स और मिस इन्फॉर्मेशन, फेक ATO कॉल्स, फ्रॉड एजेंट्स, व्हाट्सएप पर स्कैम, और क्या ChatGPT से टैक्स के सवाल पूछना सेफ है. ये सब होगा अगले भाग में. SBS हिंदी पर इस अंश को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा. धन्यवाद. SBS हिंदी की नई श्रृंखला
2: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में.
3: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है. SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत. अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें. SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम अभी कुछ मैसेजेस पढ़ने का समय आ गया है. ईशा लिखती हैं कि हाय, आई डिड मेनी ऑड जॉब्स व्हेन आई केम हियर सेवरल इयर्स अगो. रेस्टोरेंट में काम किया, ब्यूटी सैलून में थ्रेडिंग का काम किया. शुरू के सबसे मुश्किल दिनों में किए थे ये सब काम. एंड थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो थैंक यू सो मच ईशा अपना मैसेज भेजने के लिए. एंड आई एम श्योर कि काफ़ी चैलेंजेस होते हैं लोगों को शुरू में अपनी मेन जिस चीज़ में वो जॉब करना चाहते हैं उसमें अपना एक पोजीशन और अपॉर्चुनिटी अवसर पाने के लिए. तो वक्त लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो जाता है. तो आपने अभी सुना SBS हिंदी की फाइनेंस से जुड़ी श्रृंखला मनी मैटर्स का तीसरा एपिसोड, जिसमें आज हम बात कर रहे थे कैश जॉब्स और साइड हसल्स की. इसके कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसमें हमने कोशिश की है स्वाति शर्मा ने खासतौर पर कि फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको बहुत सरल भाषा मिले. तो ये पूरी सीरीज आपको SBS हिंदी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप जरूर इसको जाकर सुनिएगा. और इसी से जुड़े कुछ रील्स यानी वीडियो कंटेंट भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. अब वक्त हो चुका है एक और गाने का. एक और गाना सुनेंगे और उसके बाद एड ब्रेक, और वापस आकर आज के शो में एक आखिरी रिपोर्ट. आप भी अपना मैसेज करिए जब तक 04397997 पर कि आपकी वो पहली जॉब या वो एक्स्ट्रा जॉब कौन सी थी जो आपने ऑस्ट्रेलिया में आकर करी थी. चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद. सुन रही है SBS हिंदी.

0: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियाँ, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
1: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS News In-Depth podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In-Depth आपके पसंदीदा podcast app पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
4: SBS हिंदी पर मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और शो में कुछ ही टाइम रह गया है और इस वक्त अब टाइम हो गया है एक गाना प्ले करने का, लेकिन उससे पहले जो आज का सवाल था वो एक बार फिर से दोहरा देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप शुरू करते हैं तो कई सारे जॉब्स करते हैं, ऑड जॉब्स करते हैं, कैश जॉब्स करते हैं, और इसी पर जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या आपने भी ऐसी कोई जॉब की है और इन्जॉय किया है, उस चीज़ को कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मनी मैटर्स का जो तीसरा एपिसोड है आप आज उसको हमने प्ले किया रेडियो शो पे, हमारे वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi पर। चलिए इस वक्त हो गया है एक वक्त गाने का, वो गाना सुनेंगे, वापस आएंगे एक आखिरी रिपोर्ट के लिए, और रिपोर्ट के बाद आपसे लूँगा अलविदा क्योंकि हमारा शो के हम आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। चलिए इन्जॉय करिए गाना, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और शो की आखिरी रिपोर्ट का समय हो चुका है। ब्लैकटाउन सिटी फेस्टिवल 2026 के स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में सिडनी की सड़कों पर बहुसांस्कृतिक रंगों का उत्सव देखने को मिला। इस मौके पर भारतीय समुदाय समेत कई समूहों ने अपनी संस्कृति, संगीत और परंपराओं की शानदार झलक पेश की। आइए सुनते हैं शशि कुमार की ये रिपोर्ट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूँ शशि कुमार। सिडनी के पश्चिमी क्षेत्र ब्लैकटाउन में आयोजित ब्लैकटाउन सिटी फेस्टिवल 2026 के दौरान शहर की सड़कों पर बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया का जीवंत रंग देखने को मिला। करीब एक महीने तक चलने वाला यह उत्सव पिछले 50 वर्षों से स्थानीय समुदायों को एक मंच पर ला रहा है और आज पश्चिमी सिडनी के सबसे बड़े सामुदायिक आयोजनों में से एक है। इस वर्ष 3 मई से 31 मई तक चले फेस्टिवल में 18 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे सबसे प्रमुख आकर्षण रहा। शनिवार को ब्लैकटाउन की सड़कों पर निकली परेड में विभिन्न देशों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, रंग बिरंगे झंडे, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। 30 मई को ब्लैकटाउन सीबीडी में आयोजित स्ट्रीट्स अलाइव एंड परेड डे में सुबह से ही संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, फूड स्टॉल्स, बाजारों और परिवारों के लिए कई मनोरंजक गतिविधियों का माहौल रहा। पूरे दिन हजारों लोग इस उत्सव का आनंद लेते नजर आए। इसी दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे स्थानीय निवासी हरदीप सिंह ने SBS हिंदी से बातचीत में कहा,
2: 13 साल से इधर ही रह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। ब्लैकटाउन काउंसिल बहुत लुक आफ्टर करता है हमारा सब कुछ।
3: क्या खास है यहाँ ब्लैकटाउन में?
2: खास है कि हमारा ज्यादा कम्युनिटी इधर है, हमारा इधर पंजाबी कम्युनिटी काफी है, इंडियन है काफी, इंडियन शॉप है, इसलिए ज्यादा इधर है।
3: और कुछ यहाँ ऐसा है जो आपको लगता है इम्प्रूव करना चाहिए, कोई कमी कुछ ऐसा?
2: अभी तक तो नहीं है, सब कुछ ही काउंसिल अपने आप ही सब कुछ इम्प्रूव कर रहा है, जैसे कि बच्चों का पार्क, सभी खेलने के लिए ग्राउंड, सब कुछ इम्प्रूव है, काफी रोड्स का सब कुछ है।
3: फुटबॉल देखते हैं?
2: कभी कभी।
3: कौन सी टीम फेवरेट है आप?
2: हमारा तो इंडिया का टीम फेवरेट है, वही देखते हैं।
1: कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सुबह 11 बजे निकली भव्य परेड रही, जिसमें स्थानीय समुदायों, सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक समूहों और आपातकालीन सेवाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह परेड ब्लैकटाउन की सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक एकता की एक खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही थी। इस परेड में भारतीय समुदाय की भागीदारी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। पारंपरिक भारतीय परिधानों के साथ साथ मोटरसाइकिल रैली ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक और सामुदायिक संगठनों ने अपनी विरासत, संस्कृति और परंपराओं को पूरे उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ साथ विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सम्मान को भी मजबूत करते हैं। ब्लैकटाउन के मेयर ब्रैड बंटिंग ने भी इस फेस्टिवल को समुदाय के लिए एक विशेष अवसर बताया। उनका कहना है कि यह आयोजन स्थानीय लोगों को अपने शहर और उसकी विविध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने का मौका देता है। स्ट्रीट्स अलाइव केवल एक परेड नहीं बल्कि समुदायों के बीच संवाद, सहयोग और सहभागिता का उत्सव है। गीत संगीत, नृत्य और भोजन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आती हैं और यही ऑस्ट्रेलिया की बहुसांस्कृतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत है। सिडनी के मर्सन पार्क की रहने वाली रिया का कहना है,
4: मेरा नाम रिया है और मैं अभी तो मार्सडन पार्क से आई हूँ, वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। I really like the Turkish food here and especially अभी विविड फेस्टिवल चल रहा है तो उसमें ड्रोन शोज होते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली यहाँ के पार्क्स और यहाँ की सेंचुरीज बहुत सुंदर है। मैं अभी अभी गोल्ड कोस्ट भी घूम के आई हूँ और वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज करी हमने। My favorite food here is obviously some of the desserts from Max Brenner's. And Indian food in Harris Park is also really good. Yeah. अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन मैं ये काफी टाइम से अटेंड करते आ रही हूँ, 10-15 साल से। यही बोलना चाहूंगी कि इवन ये SBS पूरी कम्युनिटी को अलाइन रखते हैं और बहुत अच्छे से हारमोनी से सबको इन्वॉल्व रखते हैं, अपने कल्चर और अपनी कम्युनिटी से भी कनेक्ट रखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू नो अबाउट इट एंड स्टे कनेक्टेड इन अ डिफरेंट लैंड एज वेल।
1: ब्लैकटाउन सिटी फेस्टिवल 2026 एक बार फिर यह संदेश देने में सफल रहा कि विविधता केवल हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारी सामूहिक शक्ति भी है। SBS हिंदी के लिए ब्लैक टाउन से मैं हूं शशि कुमार।
0: SBS हिंदी पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लूँगा आपसे अलविदा और इस वादे के साथ कि किसी और दिन किसी और शाम फिर से मुलाकात होगी इस शो के ज़रिए। और 04397997667 हमारा नंबर है, अपने मैसेजेस ज़रूर भेजते रहिए और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा, हम हर एक मैसेज ज़रूर पढ़ते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो 04397997667 हमारा नंबर है। और एक आखिरी गाने के साथ चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मेरा नाम है नबील और बने रहिए SBS हिंदी के साथ।

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

करे हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल झूठा है तेवर।

क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: Your news from here and hits from home. SBS South Asian.

0: Your news from here?
1: And hits from home. SBS South Asian.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

हस्ती यार जैसी होशियारी फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian।

0: पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
1: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी बातें